तेरी जीना, तेरी गली में जीना, तेरी गली में। ये रंगी नजारे हैं, मस्ती के इशारे हैं, आप कहीं दूर चले बाहों के सहारे हैं। ये रंगी नजारे हैं, मस्ती के इशारे हैं, आप कहीं दूर चले बाहों के सहारे हैं। और मन दिल की मिल के पुकारे, ओ जीना तेरी गली।